शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मनमुख

मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वड

सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई, एक दान मंगाए नानक बेचारा हर दास नदास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वड्याई,

आनंदिनो शब्द रवहो, अनहद शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए, हर गुण गाव हो नारी, आनंदिन भगत करहें गुर आ गए, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसे

गुण शब्द रवै रव रहयास प्रभु मेरा स्वामी राम प्रभु मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रवया सोई गुरमत सच पाई।

नाम अखोट निदान है गुरमुख मन बसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक पाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

पहला गुर वचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

हर हर जागते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूके मन अभिमान कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

एको नाम। इस जुग महें वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई। जय देखां तह रहया समाई।

आप ही घट घट आप अलिपना आपे अवगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवां।

साध संग इस मन है उधारों मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई ता मिलिए जान ले मिलाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया।

साध संग मन तन हितै फिर दुख न जापै हर हर हर हर जापिया अंतर लिवलाई किल विख उतर है शुद्ध होए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम।

अमृत पी अमृत तृप्त से आता का अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कोल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं नीच अनाथ अजान

रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जाका वड प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कलता हरी, मन बांश फल दित्यन नानक बलिहारी।

दृष्ट दृष्टाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश पुछैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम चंदन।

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चुवै।

जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदिर आराम। हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया।

आए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्लै पाए पौड़ी।

है सब तृष्णा भुख गवाए हरड पी संतोख हुआ सच वसिया मन आए सच ध्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग मनुआ गीध नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

छाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गत मित अवर न जाने गुरबिन समझ न होई पुरख मह नार नार मह पुरखा

लकरी बिखरजरी मंझ पहार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग बेयोगी भुगत नाम गुर शब्द विचार।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय जत कत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सदगुर जोग का तहां निवासा जय अवगत नाथ अगम तनी।

जे कुटंब छोड़ पर भवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है। इहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इस मह रोग वड्डा तृष्णा माया।

सतसंगत मह नाम निर्मोलक वड्डा भाग पाया जाई परम ना भूलो सतगुर सेवहो मन राखहो एक ठाई।

इहो शरीर सर्वर है संतहो, इशनान करे लिव लाई, नाम इशनान करहे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई, त्रै गुण अचेत नाम चेत है नाही, बिन नाम है बिन सजाई, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत, त्रै गुण परम फुलाई।

शांत। प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै, गुर चरण लागे दिन सभागे,

जाए पुछहो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करेन ओए पहाणे चलन अपने नित झूठ।

पौड़ी। मनमुख मोहगुबार है दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है मथ तत कढोलै, अंतर प्रगा

सममोहे गुरपुरै मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जय वड अवर ना कोए पौड़ी।

तागी सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संजम रवसस गहने देओ रे। सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पेओ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल

पाठी पियो महारस पारी। काम क्रोध द्वय किए जलेता छूट गई संसारी।

था सब सिद्ध साधक मुन जना मन भावनी हर त्यायो अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हर अलख

सुख दुख ही तय अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग

भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावै गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन

यो भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मारे गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइये शब्द सुरत बिन आइये जाइये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे भाग मिलाया।

पुरख मन हाथी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों। गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्द ही सब

ना गुरमुख होवै सो सच कमावै साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हो मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हो मैं मार निवारी हे सच लगे

है आन दिन गुण रवह दिन राती, आन दिन गुण रवह दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरह से मरण सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर

गुण निदान मन तन महरवया, जन्म मरण की जोन ना पभया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

दीहे। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिरस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने जग

तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसह न आवे जम नेड़ा, कीमत कागद कही ना जाई, कहु नानक बेअंत गुसाई।

निवार उदाहरण। कमला कंत करह कंतूहल अनद विनोदी निहसंगा अमोघ दर्शन आजूनी संभव अकाल मूर्त जिस कदे नाही खाओ। अविनाशी अवगत अगोचर अविनाशी अवगत अगोचर सब सब किछ तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वासी मछकछ कूर्म आ

खराम शराशरयत लेकम्मा वहो त्रिकत तर्क खोज टोला वहो मारफत मन मारहो अबदाला मिलहो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द

गर्व अगन मह जिन्हें उबारिया रखत किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।

सच शाह अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनो तोलै पन्नन करण समर्थ है ओपत सब पर लै करण कारण समर्थ है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सै क्या मानस डोलै गहर गंभीर अथा तू गुण ज्ञान अमोलै।

तू जल थल महियल भरपूर सब ऊपर साच तनी जिन जपया हर मन चीत हर जप जप

बिन कबहु न छूटस, बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपहो रस रसना, इन विद तार तू तारी। बहरे करन अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

बात खोई, बहले पेख पवह दिन राती, हों मैं रोग न जाई। पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेव है।

दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने शब्दे मेल मिलाया रहाउ। आन दिन भगत करह दिन राती दुविधा शब्दे खोई सदा निर्मल है जो सच राते सच बसिया मन सोई। मूर्ख दुविधा पढ़ है।

68 सुरसरी। हम मूर्ख कौ हर कृपा करी, जन नानक तारियो तारण हरी। पैरों महला चौथा। सोकृत करनी सार जप माली, हृदय फेर चले तुद नाली। हर हर नाम जप हो बनवाली, कर कृपा मिल हो सतसंगत। टूट गई माया जम जाली रहाओ, गुरमुख सेवा काल जिन काली। तिस घड़ी है शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्धा हर पाली।

रहाओ। गुरसिख हर बोलहो हर गावहो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर के रा, सो जन पावे हर सुख घणे।

नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अल्लाह ना विसरै दिल जी प्राण, पैरों महला पंजवां। साच पदार्थ गुरमुख लहो

रहाओ। काल युग में एक नाम उधार, नानक बोले ब्रह्म विचार। पैरों महला पंजवा सतगुरु सेव।

पंजवां निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिख संचय नित डरता फिरै है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर।

अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए। जिस मस्तक कर्म लिखिया ललाट, जिस मस्तक

हम सोते। प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा, ज्यों पावे त्यों करहे निबेरा, द्वितीया नासत एक रहे।

जिस नाम हृदय तिस वड परवार, नाम बिना मन मुख गावार। जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन।

गुरमत खोज परे तब पकरे तनसाव तरास उबरया। पाखंड परम उपाव कर थाके हृदय अंतर माया माया साधु पुर

खेल तुझ महे समाहे, ज्यों पावे त्यों राख ले, सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवां।